0: is also to understand is very, very important.
1: Of course.
0: वो communication जब तक अच्छी तरह से established नहीं होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, because we are all in the business of communication.
1: Right.
2: बिल्कुल. तो इसी के साथ साथ, हाँ, शैलजा जी आप बोले.
1: That should be between person and person, not between AI and me.
0: Yeah. Yes. Absolutely जी. ठीक.
2: अच्छा, तो ये है कि हम जय कृष्ण बोलते हुए याद करते हैं कि कल जन्माष्टमी भी थी. और परसों थी, चार तारीख
1: परसों भी थी, कल भी थी. एक होती है गृहस्थों की, एक होती है संतों की.
2: अच्छा अच्छा.
1: तो गृहस्थों की जो थी वो तो परसों थी, कल थी संतों वाले.
2: तो कृष्ण जी का नाम लेते हुए हम एक वार्ता जन्माष्टमी की भी सुन लेते हैं. रंजना जी ने भेजी है.
3: श्रोताओं, जैसा हम सब जानते हैं, 4 सितंबर 2026 यानी शुक्रवार को भारत में और दुनिया के कई देशों में सारे भारतीयों ने और विदेशियों ने भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाया. मैं रंजना रमन आपके साथ कृष्ण जन्माष्टमी की एक छोटी सी वार्ता में चलूंगी, और इस वार्ता में हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण का जीवन एक प्रेरणा है और कैसे वो प्रेरणा हमारे लिए आज और अधिक संगत है, आत्मसंगत है, और हमें उसे क्यों सुनना चाहिए. वो रात जब आशा जन्मी थी. जन्माष्टमी सिर्फ एक त्यौहार नहीं, यह वो क्षण है जब अहंकार के बीच प्रकाश ने जन्म लिया, जब अन्याय बढ़ा, जब भय ने लोगों के दिलों को जकड़ लिया, तब एक दिव्य बालक ने दुनिया को यह संदेश दिया, धर्म कभी हारता नहीं, बस उसके लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है. कृष्ण का जन्म हर कठिन समय के बाद एक नई शुरुआत होती है. कृष्ण का जन्म चमत्कारों से भरी एक रात थी. मथुरा की जेल में कंस के आतंक के बीच देवकी और वसुदेव ने उस दिव्य शिशु को जन्म दिया. जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में चले गए, और यमुना ने रास्ता बना दिया. यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक संकेत है कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो प्रकृति भी मार्ग बना देती है. कृष्ण का जीवन प्रेम, साहस और कर्म का संदेश देता है. कृष्ण ने बचपन में गोकुल को हंसी और संगीत दिया, युवावस्था में मथुरा को साहस और द्वारका को नेतृत्व. उनका हर कदम हमें तीन बातें सिखाता है. प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं. साहस वही है जो सही के लिए खड़ा हो. कर्म ही जीवन का असली धर्म है. कृष्ण ने कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानी, उन्होंने उन्हें बदल दिया. आज की दुनिया में जन्माष्टमी का एक अलग महत्व है. आज हम तनाव, प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा और अनिश्चितता से भरी दुनिया में जी रहे हैं. कृष्ण का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है. मन को शांत रखो, निर्णय भावनाओं से नहीं विवेक से लो. सही कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो. प्रयास को श्रेष्ठ बनाओ, अहंकार छोड़ो. रिश्तों में विनम्रता ही स्थायी शक्ति है. धर्म का साथ दो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, सही रास्ता कभी गलत नहीं होता. कृष्ण कहते हैं कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है. जो अपने भीतर के भय, क्रोध और भ्रम को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है. और इस पर हमने आज के विचार में भी बात की थी. जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति और आनंद का उत्सव. उस दिन घर घर में झूला सजता है, मक्खन मिश्री चढ़ती है और भजन गूंजते हैं. कान्हा की बाल लीलाएं हमें याद दिलाती है कि जीवन को हल्के फुल्केपन, हंसी और प्रेम से भी जिया जा सकता है. दही हांडी की परंपरा हमें सिखाती है कि ऊंचाइयां अकेले नहीं, मिलकर हासिल होती है. कृष्ण का संदेश जो हम सब के लिए है. जन्माष्टमी हमें प्रेरणा देती है कि हर अहंकार, हर अंधकार में एक प्रकाश छिपा है, हर चुनौती में एक अवसर, और हर मनुष्य में एक कृष्ण जो सही समय पर जागता है. कृष्ण का जन्म सिर्फ एक उत्सव नहीं, आत्म जागरण है. यह याद दिलाता है कि हम भी अपने जीवन में धर्म, प्रेम और कर्म का प्रकाश फैला सकते हैं. जय श्री कृष्ण.
4: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant.

0: restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो सुब्बा राव जी, ऐसा है कि आप इतना सारा काम करते हैं, और आप इतना सारा काम क्यों करते हैं?
2: ये राज आज आप खोलिए कि हम लोगों को कुछ मिले प्रेरणा।
3: बिल्कुल, देखिए इट इज अगर कहेंगे तो सेल्फ ड्रिवन है मेरे को। इफ आई डोंट हैव वर्क ऑन माय हैंड, दिमाग थोड़ा पागल जैसा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
3: सबसे पहले
2: आप पागल मत होइए।
1: नहीं, आप करते रहिए और करिए।
3: एंगेज ब्रेन को एंगेज करना अच्छे कामों के लिए बहुत ही जरूरी है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज बिटवीन मी एंड माय वाइफ डॉक्टर सरयू राव जी जो है, तो इन हम दोनों के बीच में वी रियली हैव कम्युनिटी एट हार्ट। इन फैक्ट इन लॉट ऑफ इंस्टेंसेस माय वाइफ इज मोर towards community.
2: Yes.
3: And I have a strong focus. Whatever I do, commercially it has to be viable. Halanki a not-for-profit hai, halanki ACNC registered hai, DGR endorsed hai, any donations more than $2 is tax deductible. But hum logo ne actively usme gaye nahi hai. Lekin main focus karta hun har jagah pe, financially can I make it viable? And ऑफ कोर्स आजकल क्या हो रहा है, काम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मेरे आईटी कंपनी के काम में भी काफ़ी वो सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज आई डू फेस समटाइम्स ऑन प्रायोरिटीज, क्योंकि कई बार वहाँ पर मेरे को टेंडर के लिए काम करना पड़ता है और यहाँ पर भी एक ग्रांट एप्लीकेशन डालना पड़ता है और रात को 10 11 12 बज ही जाते हैं मेरे को। फिर भी हम वी हैव पीपल especially इंडिया में भी एक दो लोग हैं जो हमारे अकाउंटिंग के काम करते हैं, ग्रांट राइटिंग का काम करते हैं, उनको हम ट्रेन करके काम दिया हुआ है। जब तक ये चल रहा है, मैं माइंड को एक्टिव रख के कर सकते हैं तो मैं करना चाहता हूँ। और प्रॉबली एट सम टाइम इन द फ्यूचर लाइक लॉट ऑफ अस वॉन्ट टू डू, एक अपना इंडियंस के लिए एक सपोर्ट सेंटर अच्छा सा बनाने की वो कोशिश में है।
1: मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि यहाँ पर देखिए अब इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि कभी कभी काफ़ी लोगों को लोनलीनेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो फ़ोन आ गया है, रील्स हैं, लोग उसमें घुसे रहते हैं और कम्युनिटी इंटरेक्शन इज़ मिनिमल। जब कम्युनिटी इंटरेक्शन मिनिमल हो जाता है तो क्या है, आदमी का दिमाग खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि दिमाग को सही रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करिए। और तो मैं कुछ कह नहीं सकता, हमारे साइकाइट्रिस्ट बैठी हुई है शैलजा जी, आप बताइए।
2: ये कुछ लोग होते हैं चैलेंजेस आर एनर्जाइजिंग फॉर देम, एंड आई थिंक आप उसका जीता जागता उदाहरण हैं कि चैलेंजेस जितने आते हैं उतने ही आपको एनर्जी लगती है, उतने ही आपको इंस्पिरेशन मिलता है।
3: मुझे अच्छा लगता है चैलेंजेस आने से।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ही लोग अगर हमारे समुदाय में हो तो फिर क्या कहना है।
1: अच्छा शैलजा जी,
3: हाँ, एक छोटी सी मैं बताना चाहता हूँ। जैसा लोनली फील करते हैं आप बोल रहे हैं, यहाँ की समस्याएं कुछ कम्प्लीटली अलग होती हैं। टू डेज पहले, दो दिन पहले वन लेडी, उनका फोन आया मुझे, एंड उनका वट एवर इट इज हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते, उनका एक बच्चा प्रीमेच्योर बॉर्न था।
1: अच्छा,
3: एंड 8 महीने पे बॉर्न हुआ, फिर उसके बाद अभी 3 महीने 4 महीने हो गए, तो शी इज इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल विद द किड। अब वो कहती हैं कि मेरा बेटी जो है उसका ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम काफ़ी सुना रही थी, फिर बोल रही थी मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो लाइक हु ट्रीट मी लाइक हीज़ और हर सिस्टर, हु ट्रीट मी लाइक देयर डॉटर, जिनके साथ मैं हफ्ते में 2-3 घंटा टाइम बिता सकूँ।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: तो ये सुन के मुझे यू नो आंसू आ गए फोन पे, फिर मैंने कहा चलो लेट मी वेट टिल माय वाइफ कम्स बैक टुमारो, उनसे बात करके वी नीड टू प्रोवाइड ए बिट ऑफ ए फोरम फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल टू हैव दैट सोशल लोनलीनेस, अगर हम उसको एड्रेस कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
1: इसमें हमारा भी हमको भी रिक्रूट कर लीजिए कि अगर आपको इस तरह की जरूरत हो तो हमें बताइए, हम उसमें सहयोग देने की पूरी कोशिश करेंगे।
2: इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप फैमिली सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, कि हमारी इंडियन कम्युनिटीज़ में डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इशू है और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, तो अब आप बताइए कि किस तरह से आप टैकल करते हैं।
3: ओके, सबसे पहले कोई भी जिस इंसान को प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, जनरली वो कम्युनिटी में आके बताना नहीं चाहते
2: नहीं,
3: लोगों को
2: बिल्कुल
3: नहीं, वांट टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल। तो जब वो लोग आते हैं उनको वन टू वन बैठ के बात करते हैं, इधर आई एंगेज देम इन डिस्कशन, और जनरली ये फीमेल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा माय वाइफ हु इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय हरसेल्फ, और हमारे सेंटर मैनेजर, ये लोग उनसे बैठ के एक इनटेक नोट्स बनाते हैं। इनटेक नोट्स जो बनाते हैं उससे थोड़ा सा जस्ट लाइक डेवलपिंग ए बिट ऑफ ए हॉरोस्कोप ऑफ द प्रॉब्लम्स, जब से हमें पता लग जाता है प्रॉब्लम है, देन वी नीड टू वर्क ऑन डिफरेंट वेज ऑफ एड्रेसिंग दोज इश्यूज। And there are some cases where we got a panel of mediators, family mediators. उनके पास direction देके भेजते हैं. In some cases, अगर बहुत सारे advance हो गया problem, it could be police kind of involvement will be there. Then before that, there will be involvement of, you may require psychologists and psychiatrists to prepare some sort of a report on them. Then the most important thing what I have observed is, अभी समाज में आदमी हो या औरत हो डजंट मैटर, दे यूज वीसा एज ए वेपन।
2: यस,
3: वीसा को,
2: वीसा बहुत बड़ी चीज है,
3: मैं तेरे को इंडिया भेज दूंगी आज रात तक,
2: बिल्कुल,
3: जैसा पूरा देश उस औरत के कंट्रोल में है। आदमी का भी ऐसा ही हाल है, मैं तेरे को आज रात को भेज दूंगा इंडिया। नाउ ऐसे ऐसे थ्रेटनिंग जो होता है, ये थ्रेटन से दूसरा पार्टनर जो है उनका मानसिक जो सिचुएशन जो है बहुत ही खराब हो जाता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस पे यू नीड ए गुड इमिग्रेशन एजेंट, ओके, यू नीड ए साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट सपोर्ट, देन यू नीड ए समटाइम्स लॉट ऑफ टाइम्स इट्स ओके फाइनेंशियली दे मैनेज, बट समटाइम्स देयर कुड बी बिट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड। ये पूरा करके उनको प्रॉपर वीसा का प्रोसेसिंग करा के, जो भी पीआर वगैरह हो जाता है अच्छा है, उनको रीसेटल कराना इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट सम केसेस टेक almost a year and a half to 2 years by the time they get their proper visa. तो ये सब वहाँ पर चलता रहता है, and we maintain notes in our CRM systems, keeping it highly confidential. बिल्कुल।
2: ये इंडियन गवर्नमेंट का एक प्लान था, कुछ सालों पहले उन्होंने शुरू किया था कि डोमेस्टिक वायलेंस के या इमिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी इस तरह के होते हैं, जो लोग वहाँ से शादियाँ करके लाते हैं, ये उन सब में उनको सपोर्ट करने के लिए दे हैड अ प्रोविजन ऑफ सम फाइनेंशियल एड।
3: हाँ,
2: व्हाट इज दैट?
3: वो है उनका, मेरे ख्याल उनका जी एक पैनल ऑफ सोलिसिटर्स है, दो तीन चार पांच पता नहीं कितने हैं उनके पास, सो इफ यू नीड लीगल सपोर्ट देयर, दे डू प्रोवाइड इट थ्रू दोज पीपल, इतना तो जरूर करते हैं
2: जी।
3: लेकिन मुझे ये नहीं पता इफ दे गिव एनी डायरेक्टली एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, आई डू नॉट थिंक सो। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपका फैमिली प्रॉब्लम वगैरह बहुत सीरियस हो जाता है, अगर वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ पर इट्स ए बिग ओशन इंडियन कॉन्सुलेट, उनको सही अटेंशन मिलना, सपोर्ट करना, वहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। नाउ उनको तो वैसे भी जो लॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स व्हेन दे अकर विथ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, तो उनको भी थोड़ा हम लोग जानकारी देके उनको वी कीप देम अपडेटेड विद द इंफॉर्मेशन। कई बार ये भी हो जाता है कि इंडियन कोर्ट से ऑर्डर आता है, ये इनका पासपोर्ट जो है तुम कॉन्फिस्केट करो करके, ऐसे ऐसे भी हुए हैं।
2: अच्छा।
3: तो इसलिए कॉन्सुलेट को इन्फॉर्म करके इन सम केसेस एटलीस्ट, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया दिस फैमिली सपोर्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक सपोर्ट टू हार्म प्रिवेंशन टू डोमेस्टिक वायलेंस, बढ़ता जाता है रिस्क. एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ द वुमेन एंड द मैन. एक ज़माने में ए वुमन यूज टू कम, वंस आई रिमेंबर स्टिल, एक साल की बच्ची को लेकर रोते रोते सपोर्ट सेंटर में आती थी. फिर हमारे वहाँ पर एक हमारे को डायरेक्टर भी हैं, एक जसप्रीत चोपड़ा जी, अभी कम्युनिटी सर्विसेज में काम करती हैं, वो भी वॉलंटियर के रूप में उनको बैठ के बात करके सपोर्ट करती हैं. तो दैट वाज द सिचुएशन ए फ्यू इयर्स बैक. आजकल मेन फोक्स आर आल्सो इन ट्रबल.
2: यस,
3: आई हैवंट सीन जनरली अर्लियर ए मैन क्राइंग.
2: यस,
3: बट टुडे आई हैव सीन एट द सपोर्ट सेंटर मेन कमिंग देयर एंड वर्चुअली क्राइंग
2: एज अ डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम.
3: डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम, ओके, अभी एक केस मैं हैंडल कर रहा हूँ.
2: यस,
3: तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब ये लोग वहाँ बैठ के किस लिए आंसू बहाते हैं, वाइफ डजंट गिव एक्सेस टू द किड. Basic thing. Obviously, kid is both parents, they require, parents. So, there's one issue. Second, again, as I told you, visa is being used on the husband. Abhi bichara recently aaya hua hai. Oh, visa is being used, tere ko wapas main bhej dunga aaj raat tak. You know, things like that, hote rehte hai, ab kya kare, whatever we can. To address the issues, hum karte hain.
1: Achha, isme ek angle aur aata hai.
3: Ji.
1: Ki... न्यूट्रिशन भी ज़रूरी होता है. शैलजा जी, न्यूट्रिशन अगर किसी विटामिन की कमी हो गई तो दिमाग वैसे ही ख़राब होने लगता है शायद.
2: बिल्कुल,
1: है ना.
3: ठीक है,
1: तो इसी पर एक वार्ता भेजी है रंजना जी ने. नेशनल न्यूट्रिशन डे अभी मनाया गया, तो उसे भी सुन लेते हैं.
2: बिल्कुल
4: श्रोताओं, आज भारत में नेशनल न्यूट्रिशन डे मनाया जा रहा है. मैं आपके साथ इस वार्ता में शामिल होना चाहती हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि अच्छे पोषण और न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है. हम सब जानते हैं कि सही न्यूट्रिशन ही सही विकास और सही स्वास्थ्य देता है. उन सब को हमें फिर से याद करना चाहिए इस नेशनल न्यूट्रिशन डे पे. स्वस्थ भारत की नींव पोषक भारत से ही बनती है. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब भाग रहे हैं, काम के पीछे, सपनों के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे, लेकिन इस दौर में अक्सर हम सबसे ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं, अपना पोषण. क्यों ज़रूरी है पोषण? भारत में आज भी लाखों बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं. कई महिलाएं आयरन की कमी से परेशान हैं और युवाओं में जंक फूड की आदत बढ़ रही है. पोषण सिर्फ खाने का नाम नहीं है, यह शरीर, मन और भविष्य की सुरक्षा है. और क्योंकि हमने कृष्णाष्टमी मनाया है, मैं कृष्ण के इस उल्लेख को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ. कृष्ण ने गीता में कहा था, शरीर ही साधना का पहला साधन है. अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो जीवन में कोई भी यात्रा पूरी नहीं हो सकती. राष्ट्रीय पोषण दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिन का मकसद है लोगों को जागरूक करना कि सही भोजन ही सही विकास देता है. संतुलित आहार बीमारी से बचाता है. पोषण सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर उम्र के लिए जरूरी है. स्थानीय और मौसमी भोजन सबसे अच्छा होता है. सरकार, स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल सब मिलकर इस फैलाते हैं और रेडियो दर्पण भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है. क्या है संतुलित आहार? एक संतुलित थाली में अनाज, दाल और प्रोटीन, हरी सब्जियां, फल, दूध और दही और सबसे ज़रूरी पर्याप्त पानी. यह थाली सिर्फ पेट नहीं भरती, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक संतुलन भी देती है. आज की दुनिया में पोषण का बहुत अधिक महत्व है. आज बच्चे मोबाइल पर खेलते हैं और बड़े स्क्रीन पर काम करते हैं और परिवार बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करता है. ऐसे समय में पोषण का महत्व और बढ़ जाता है. जंक फूड अगर स्वस्थ नहीं है, अगर उसमें सही मात्रा में संतुलित आहार नहीं है, तो वो तात्कालिक स्वाद देता है लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है. घर का खाना प्यार, सुरक्षा और पोषण तीनों देता है. व्यस्त जीवन में भी 10 मिनट निकालकर स्वस्थ विकल्प चुनना संभव है. नेशनल न्यूट्रिशन डे का संदेश है कि स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, यह प्राथमिकता है. पोषण एक संस्कार है. हम अपने बच्चों को पढ़ाई का संस्कार देते हैं, व्यवहार का संस्कार देते हैं, लेकिन खाने का संस्कार भी उतना ही ज़रूरी है. अगर घर में पोषण पोषण और भोजन बनेगा, अगर बच्चे फल और सब्जियां ज्यादा पसंद करेंगे, अगर परिवार साथ बैठकर खाना खाएगा, तो यह सिर्फ भोजन नहीं स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण है। इन सब छोटी आदतों से एक बड़ा बदलाव हो सकता है। नेशनल न्यूट्रिशन डे हमें ये सिखाता है कि एक छोटे छोटे कदम हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जैसे कि आप एक फल रोज खाएं, जंक फूड कम करें, बच्चों को पोषण की कहानियां सुनाएं, घर में रंग बिरंगी थालियां बनाएं, सब मिलकर घर में बनाने में और बच्चों को खिलाने में और हर किसी को अपना एक पर्याप्त न्यूट्रिशन लेने में मदद करें, और सबसे ज़रूरी हर उम्र में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि अंत में पोषण ही प्रगति है और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ राष्ट्र का आधार। धन्यवाद।
5: Are you looking for personal or business tax or self-managed superfund account and audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention the Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website, www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of the Open Radio.
1: बड़ी अच्छी वार्ता थी रंजना जी द्वारा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, और साथ में पता नहीं यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर कैसा है मुझे पता है, लेकिन परिवार का एक साथ टेबल पर बैठकर खाना
6: बहुत ज़रूरी है,
1: बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो पाता है। मैंने तो देखा है, अपने घर में भी देखा है और बाहर भी देखा है, बच्चों का जब मन आता है तब जाकर खा लेते हैं कुछ भी।
7: नहीं, ऐसा नहीं होता है, सब अपने अपने जगह बिजी रहते हैं, बच्चे अपने यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हस्बैंड्स के अपने अपने हॉबी है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट।
1: नहीं, डिफिकल्ट तो है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम दिन का एक खाना साथ में खाओ, और अगर रोज नहीं खा सकते तो सैटरडे संडे है उस दिन तो खाओ, लेकिन सबके अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर इतने ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं, और लोग अपने फ़ोन में बिजी हैं, बात करनी है घंटों बात करते हैं लोग करने वाले,
6: इंडिपेंडेंस है सबकी अपनी,
1: सबकी अपनी अपनी, इसलिए
7: सबके पास अपने अपने ये फोन्स हैं, सब उसी में एंगेज रहते हैं। जो दूर वाले वो तो पास में है, जो पास वाले वो बहुत दूर हो जाते हैं।
3: जो एक जगह पे टेबल पे बैठते हैं फिर भी बच्चे मोबाइल फोन देखते हुए बैठ के खाना खाते रहते
6: बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गनीमत है कि हम लोगों की जिंदगी अब उससे आगे बढ़ चुकी है कि हमें ऐसे सीन नहीं देखने पड़ते हैं, क्योंकि उससे भी हम लोगों का स्वास्थ्य जो था वो नीचे जाए।
1: अच्छा, और खास बात ये सुपर राव जी कि यंग फैमिलीज, दो हस्बैंड वाइफ या एक बच्चा रेस्टोरेंट में गए, बच्चा तंग कर रहा है, लो बेटा ये फोन रख ले, ये तो मतलब ये मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, लेकिन करें क्या, क्या करना चाहिए आप बताइए।
3: आई डोंट नो, आई मीन ये जो आप साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट जो है, आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च वगैरह किया होगा, तो जस्ट लाइक हम कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से उनको थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग करके उनको आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। और कई बार जब एक बच्चा 8-10 साल हो जाता है, वर्चुअली 10-11 साल, अगर मान लो पेरेंट्स वांट टू गो टू किसी के घर में खाने के लिए जाना चाहेंगे, तो बच्चा कहता है नहीं आप जाओ पापा मम्मी, मैं घर में बैठ के अपना जो भी वीडियो खेलना है करते रहूँगा, वो नहीं आते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे घर कोई भी आ जाए इन दैट एज ग्रुप, मेरा एज ग्रुप को भूल के मैं उनके साथ समय बिताने के लिए कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा बात करके उनसे, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन टॉक टू देम अबाउट देयर टीचर्स, क्या पढ़ाई कर रहे हैं वैसे, बट लेकिन थोड़ा समाज बदल रहा है, आई डोंट नो वेयर इज द आंसर।
6: बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूँगी सुब्बा राव जी, जैसे कि हमने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही में नहीं बल्कि बच्चों के भी बीच में होती है, पेरेंट्स के साथ होती है, यहाँ बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो जाते हैं, तो वो अगर आपको कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं?
3: When they come, the first thing is उनको बिठा के چائے پلا کے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ, ان کو کانفیڈنس جو رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از, بہت ڈیلیکیٹ ہو جاتا ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں. مان لو وائف کمز اینڈ رپورٹس, ہاؤ ڈو یو کانٹیکٹ دا ہسبینڈ اینڈ برنگ دیم آن دا ٹیبل فار اے ڈسکشن. وہاں پر بھی ہمیں بہت ہی پرابلم ہوتا ہے. پھر دین وی ٹرائی ٹو لک ایٹ سم انٹرمیڈیٹری پیپل, کیا کسی کو جانتے ہیں, یہ سماج از اسمال آفٹر آل, تو اس سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں. وی ہیو گاٹ لاٹ آف سکسیسز دیر, دیر از نو پرابلم آن دیٹ. اوکے, تو یہ دیر از نو سمپل اسٹریٹ فارورڈ رول, اٹس اے ریزنبلی ویری کمپلیکس کائنڈ آف سچویشن. یہ پہلی بات تو یہ پرابلم شروع نہیں ہونا چاہیے, بٹ انڈر لائنگ پرابلم ان موسٹ آف دیز کیسز از منی.
2: بالکل,
3: فائنینشیل میٹرز جو ہے آج کل اسپیشلی ان آسٹریلیا کافی مہنگی ہو چکی ہے آسٹریلیا. سو دیر فور واٹ ریئلی ہیپنس از دا ریئل پرابلم کمس ایٹ, لائک فار ایگزامپل می اینڈ مائی وائف رائٹ فرام دوز ڈیز وی ہیو اے سنگل کامن بینک اکاؤنٹ. آج کل یو کانٹ امیجن اے سنگل بینک اکاؤنٹ, اٹس ہارڈ. آئی ڈونٹ ہیو اے اسٹریٹ فارورڈ آنسر.
2: ایک میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دوں گی کہ اس میں آپ کیا کریں گے کہ لڑکی کے پیرنٹس نے شادی کر دی زبردستی کہیں انڈیا میں جا کے, لڑکی کا یہاں بوائے فرینڈ آلریڈی ہے, شادی کر کے اس کا ہسبینڈ یہاں آ گیا, ماں باپ نے کہا, مطلب سچی کہانی میں بتا رہی ہوں آپ کی, ماں باپ نے وہ گئے ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے, لڑکی نہیں تھی تو انہوں نے پوچھا کہ وائف کہاں ہے میری, تو انہوں نے کہا وہ بزی ہے یا جو کچھ بھی ہے. جب یہ لڑکا کئی دن تک وہاں رہتا رہا, اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اب تو اپنی وائف سے مل لوں, تو گیا وہاں ملنے کے لیے, تو وہاں بوائے فرینڈ نے دروازہ کھول کے لگایا اس کو ہاتھ, اور اس کے بعد وہ لڑکا جو تھا وہی سوچیے بے گھر ہو گیا وہ لڑکا, نہ اس کے پاس ویزا تھا نہ اس کے پاس کوئی پیسے تھے, اور وہ در در بھٹکتا رہا, اس کو اس کے پاس بھیجا سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ اینڈ دیٹ بوائے. تو اس میں اس کیس میں آپ کیا امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے کچھ کر سکتے ہیں؟
3: میں سمجھ گیا آپ کی بات. یہ reasonably common kind of cases.
2: Yes.
3: Even right now as we are speaking, ایک دو cases ہمارے بالکل similar to what you آپ نے جیسا کہا.
2: بالکل.
3: Now, اس چیز میں میرے خیال whatever we have done so far, یہ ضرور ہوتا ہے, بوائے فرینڈ کوئی اور ہے, شادی کسی اور کے ساتھ ہو جاتا ہے, یہ common problem ہے today's world, because سماج بدل چکی ہے.
2: بالکل.
3: اینڈ ویمن آر آلسو ورکنگ سم ویئر اینڈ اینی وے واٹ ایور بی دا ریزنس. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کیس میں, جو بھی ایگریڈ پارٹی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا پورا ڈاکیومنٹیشن وغیرہ تیاری کر کے اس پہ ہمیں, دے آر ٹو امپورٹنٹ تھنگس, ون از اے سائیکالوجسٹ اور اے سائیکارٹسٹ ٹو لک ایٹ واٹ ہیپن ٹو ہز مینٹل اسٹیٹ اینڈ گیٹ سم رپورٹ, دا فسٹ پارٹ. سیکنڈ پارٹ از یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری ویری گڈ امیگریشن ایجنٹ ورکنگ وتھ یو, ویری کانفیڈینشیل رکھیں. اگر there are a lot of agents, a lot of Indian agents are there, a lot of non-Indian agents are there, جو بھی کانفرنس میں رکھ کے کام کرے ان کو یہ کیس ہینڈ اوور کر کے یہ ڈسکشن کر کے ان کے ساتھ, بیکاز پورا ڈاکیومنٹیشن یو نیڈ ٹو ریویو اینڈ سی واٹ آر دا آپشنس یہ دس پرسن کین ہیو. موسٹ آف دا کیسز دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو انڈیا فار واٹ ایور ریزنس, ویدر اکنامیکل ریزنس ہو یا نہیں تو ویدر انڈیا جانے سے وہاں پر سوشل پرابلمس ہو, واٹ ایور ریزنس, ویدر از اے میل اور فیمیل, سیم کائنڈ آف سچویشن. تو ان کو یہاں پر سیٹل کرنے کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں. اس پہ جیسا میں نے کہا امیگریشن ایجنٹ اچھا سا ہونا چاہیے, نالجبل اینڈ کانفیڈینشیلٹی رکھے, اور دوسرا ہمیں سائیکالوجسٹ سائیکارٹسٹ کی سپورٹ, اور تھوڑا ان کانسٹنٹلی انڈین سپورٹ سینٹر میں کوئی اس کیس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کرے کہ کس اسٹیج پہ کیا امیگریشن رپورٹ آیا ہے. وی آر ناٹ پریوی ٹو دیٹ, بٹ آیا کہ نہیں آیا اتنا پتا کرنے کے لیے. تو یہ کر کے اس کیس کو آگے بڑھاتے ہیں ہم لوگ. There is no other option on this.
1: اس میں کیا ہوتا ہے سبراؤ جی, کہ جب ایک اور اس طرح کی پرابلم بھی ہوتی ہے کہ ینگ فیملی آئی, ان کے دا ہسبینڈ وائف دو بچے, ینگ فیملی ہے, وہ اپنا پہلے اسٹرگل کرتے ہیں, جاب ڈھونڈتے ہیں, بچوں کے اسکول میں کرتے ہیں, لیکن اگر ان کے ساتھ گرینڈ پیرنٹس ہوں تو بات ایک دم بدل جاتی ہے. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी होती है कि ग्रैंड पेरेंट्स की एब्सेंस की वजह से बच्चे उतना नहीं सीख पाते हैं जितना कि उन्हें सीखना चाहिए।
3: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव वे जो हम लोग सोच के ग्रैंड पेरेंट्स होने से द इंटर जनरेशनल गैप जिसको हम कहते हैं तो दैट एड्स अ बिग वे इन पासिंग ऑन द कल्चरल वैल्यूज टू ग्रैंड चिल्ड्रन। ये जरूर होता है एंड उससे थोड़ा और प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है ऑन अदर साइड ऑफ द कॉइन।
1: ठीक है,
3: ओके, वेदर इट इज फाइनेंशियल और डजंट मैटर, वो होता है। तो बट लॉट ऑफ पीपल आर नॉट फॉर्चुनेट
2: यस
3: टू ब्रिंग देयर पेरेंट्स हियर और दे मे नॉट एग्जिस्ट ऑल्सो इन दिस यूनिवर्स। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, उससे थोड़ा सा अगर हो सके इंटरमीडिएटरी। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, इफ द गर्ल्स फादर और पेरेंट्स आर देयर टेंडेंसी जनरली इज टू सपोर्ट देयर गर्ल, उनको भी थोड़ा मीडिएटर जैसा बात करके दोनों को इकट्ठे लाने, इकट्ठे बिठा के बात करके समझा के ये काम करना जरूरी होता है। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा
1: मुझे लगता है ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम लेडीज के साथ ज्यादा होती है।
3: I won't single out ladies.
2: Yes, it's very complex.
3: Not fair to single out ladies. Maybe you're right. So,
1: ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने पापा की बात शुरू की है, तो एक गीत और सुन लेते हैं।

0: अच्छा तो सुनिए ऐसा है कि हम अरे जो श्रोता लोगों ने कुछ रिएक्शंस भेजे हैं तो उन्हें हाँ। थोड़ा सा पढ़ देते हैं, और मिथिला प्रोग्राम हुआ था उसके रिएक्शन से उन्हें लोगों को अच्छा लगा। ये तींदर जी बोलते हैं बड़ा अच्छा प्रोग्राम था मिथिला वाला, और इसके बाद हमारा शुरू होता लीला तिवानी जी बड़ी एक्टिव हैं, उन्होंने हमारे लिए कविता भेजी है। मैं उसकी एक लाइन तो पढ़ूंगा क्योंकि समय की कमी है। लीला जी आपको अगले प्रोग्राम में हम आपको बुलाने वाले हैं, आपसे तब बहुत सारी कविताएं सुनी जाएंगी। और विद्या कविता शीर्षक, पिता हमेशा हैं होते हैं, पिता आकाश है, आकाश में धूप है, धूप में कवच है, पिता हर्ष है, विचार विमर्श है, भटकने लगूं तो परामर्श है, पिता पहचान है, पिता लुकमान है, पिता के बिना हलकान है, पिता उपनिषद है, उपनिषदों में कठोपनिषद है, कठोपनिषद में नचिकेता है। वाह बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने, और आप हमेशा हमें भेजती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत सुंदर।
0: अच्छा उपाध्याय जी बोलते हैं, रंजना जी द्वारा प्रस्तुत आज का विचार अनुकरणीय है, समस्त श्रोताओं को फादर्स डे की बधाई। आज आशा करते हैं प्रदीप जी, आशिमा जी और शैलजा जी फादर्स डे संबंधित रोचक जानकारी और मनोरंजन गीत हम लोगों के लिए लाए हैं। ओम व्यास जी की प्रासंगिक कविता का सुंदर वाचन, ये आपके लिए शैलजा जी। ब्यूटिफुल स्टार ऑफ द प्रोग्राम जसप्रीत चोपड़ा जी हैं, हैप्पी फादर्स डे शैलजा जी, योर पोएम वॉज ऑसम एंड हार्ट टचिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन सुब्बा राव जी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डेडिकेशन टू द कम्युनिटी, वी आर प्राउड ऑफ योर कमिटमेंट। और इसी के साथ साथ हम एक सूचना और दे दें, हमें कुटुंब संस्था ने भेजी है उत्सव मल्टी कल्चरल फेस्टिवल 2026 20 सितंबर को होगा, इसके लिए संपर्क कर सकते हैं अशोक गुप्ता को 04128320 48, या राज गर्ग को 04117661700। अच्छा हेमलता जी ये हमारी डेडिकेटेड लिसनर हैं, हैप्पी फादर्स डे टू दर्पण रेडियो एंड योर टीम एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी नाइस प्रोग्राम, फादर इज़ ऑलवेज इन माय हार्ट, थैंक्स, माय फादर इज़ नॉट विद मी बट ही इज़ ऑलवेज इन माय हार्ट अंटिल आई डाई। यतीन जी, सुब्बा राव जी इज लाइक फादर फिगर सो मैनी फॉर सो मैनी, हैप्पी फादर्स डे सुब्बा राव जी आप।
2: थैंक यू
1: सुब्बा राव जी, ये यतीन्द्र जी के फादर फिगर नहीं हैं आप, लेकिन जिन लोगों को आप करते हैं सहायता उनके आप फादर फिगर हैं।
2: थैंक यू जी,
0: नमस्ते। पता नहीं पूछना पड़ेगा यतीन्द्र जी से,
1: क्या पता यतीन्द्र जी सोच रहे हो कि आप उनके फादर फिगर हैं।
2: थैंक यू जी,
1: क्लैरिफाइंग।
0: शरता सोनी जी लिखती हैं, वेरी नाइस टॉक, वेरी इंफॉर्मेटिव, इट्स सो गुड टू नो दैट सुब्बा राव जी एंड मिसेस सुब्बा राव इज एड्रेसिंग द इश्यूज विद सो टेक्निकली एंड प्लान्ड वे। राजगढ़ जी कहते हैं, ग्रेट वर्क यू हैव बीन डूइंग सुब्बा राव जी, कीप गोइंग एंड कीप गोइंग, कम्युनिटी नीड पीपल लाइक यू एंड योर वाइफ। अच्छा लीला तिवानी जी कितनी अच्छी अच्छी कविता लिखती हैं,
1: तुरंत लिख देती हैं, कोई सब्जेक्ट वो दीजिए मिनटों में उनकी कविता तैयार हो जाती है।
0: अच्छा सुनिए, मेरी थाली मेरा स्वास्थ्य सेहत का है, सुखमय संसार शाकाहारी संतुलन भोजन, रोग न आने पाए द्वारा, सजे रंग से थाली अपनी स्वास्थ्य शिखर छू जाएगी, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह में मिलकर अलग जगाएगी। वाह देखिए हमारा जो न्यूट्रिशन का वार्ता थी उसके संबंध में उन्होंने लिख दिया है। अच्छा इसके बाद अमिता श्रीवास्तव जी बोलते हैं, ब्यूटीफुल विचार और भजन के साथ प्रोग्राम के अच्छी शुरुआत, शैलजा जी के पोएम और फादर्स डे पर बहुत बहुत लाजवाब एंड हार्ट टचिंग है, सुब्बा जी राव का योगदान कम्युनिटी के लिए सराहनीय है, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, आनंद आ रहा है, थैंक यू सो मच दर्पण टीम। ऋचा जी, आजकल के बच्चे कोई रूटीन या नियम फॉलो नहीं करना चाहते, ठीक कह रही हैं आप ऋचा जी। जयरामन जी कहते हैं, फैमिली गेट टुगेदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द लिविंग। ऋचा जी, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन। जयराम जी यस ट्रू, ऋचा जी के बारे में कहते हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। अच्छा इसके बाद हेमंत, very informative and insightful program, a heartfelt thanks to Subba Rao ji for his dedicated work for our community. So ye Subba Rao ji aapne yahan aakar hamare
1: آپ نے دل جیت لیا ہے آج سب کا. اور میں اسی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ آج سوریا جی نہیں ہے ہمارے ساتھ, لیکن آپ کا جو راز ہے آپ کی سکسیس کا, اس کے پیچھے وداؤٹ بینگ اے فیمنسٹ جو رول ہے وہ ڈاکٹر سوریا کا, وہ اسیمت ہے.
2: تھینک یو.
1: اور سوریا جی آپ سن نہیں رہی ہیں کیونکہ آپ پلین میں بیٹھی ہوں گی, لیکن ہم آپ کا بہت ہی بہت آبھار پرکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی پریرنا دی ہے سبا راؤ جی کو کہ اتنا بڑا انہوں نے کاریہ سفلتا پوروک سمپن کیا ہے. تو آپ کو سچ میں سادھواد ہے, آپ کو نمن ہے کہ آپ نے ہماری بھارتی پرواسی بھارتی ایک سمودائے کے لیے آپ نے جی جان سے جو سمرپن کیا ہے وہ پرشنسنیہ ہے.
0: نہیں, بہت اچھا ہے صاحب,
1: ہر کھیتر میں آپ نے کیا ہے.
0: اور یہ ہے کہ آپ اسی طرح سے کرتے رہیے, ہم لوگوں کی پریرنا کا شروت بنے رہیے اور ہم سے ہمیشہ آپ جڑے رہیے, کیونکہ آپ اتنے سارے کارکرم کرتے ہیں. آپ نے شٹل ہیرس پارک شٹل بس سروس شروع کی, ہمارے کارکرم کے مادھیم سے آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اور کیا کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کا لوڈ بڑھے گا, لیکن آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ
1: بالکل بالکل کہ اگر آپ کا سواستھ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ خوب کام کیجیے,
0: کام کیجیے اور لوگوں سے کروائیے, کیونکہ ان کا بھی
1: سواستھ بالکل, کیونکہ بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ کا لکشیہ ہے جیون میں تو آپ کے لیے بہت بڑا یہ سواستھ کا ایک بہت بڑا سورس ہے.
2: تھینک یو جی, بہت اچھا کہا.
1: اور آپ ہماری فیڈ بیک سے آپ نے دیکھا ہوگا آج آپ اسٹار ہیں اس پروگرام کے, آپ نے دل جیت لیا ہے سارے ہمارے شروتاؤں کا. بالکل
2: بالکل جی, تھینک یو.
0: ہمارے کارکرم میں آتے رہیے, لیکن ابھی رکیے, ہم آپ کو ایک اور اسی بات پر سندر سا گیت سناتے ہیں,
2: ضرور
0: پھر بات کو آگے بڑھائیں گے
1: آپ کے پتا جی کے لیے شردھانجلی کے روپ میں.
2: تھینک یو جی.

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने जा रहा है। मैंने सोचा था कि अगर समय मिला तो एक कहानी जो मैंने लिखी है और उसे सुना देते हैं। क्योंकि एक दिया जो है वो कितने सारे दिए प्रज्वलित कर सकता है।
2: हाँ।
1: और हमारे सुब्बा राव जी वही हैं। देखिए, हम उसी के बारे में ये कहानी है, दिया और अनगिनत रोशनी।
2: तो आपकी ये कहानी स्वरचित है।
3: दिल्ली के छोटे से मोहल्ले में रामलाल नाम का एक सब्जी बेचने वाला रहता था। सुबह जल्दी उठकर वह अपनी ठेली लगाता, दिन भर मेहनत करता और मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता। एक शाम सर्दी के दिनों में उसने देखा कि उसकी दुकान के पास एक बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही है। उसके पास ना ओढ़ने को कुछ था ना खाने को। रामलाल के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उसने अपनी एक पुरानी शॉल उतारकर उसे दे दी और बचे हुए सब्जी में से कुछ आलू भी उसके हाथ में रख दिए। उस बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। रामलाल को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उस पल को एक राहगीर देख रहा था। मोहन नाम का एक कॉलेज छात्र जो अपने पिता के बिजनेस में मदद करने वाला था। उस रात मोहन देर तक सोच में डूबा रहा। अगले दिन उसने अपने पिता से कहा, हमारी दुकान में हर महीने कुछ खाना ज़रूरतमंदों के लिए भी रखें। पिता हैरान हुए पर मान गए। ये छोटी सी शुरुआत थी। मोहन ने कुछ साल बाद अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा फूड बैंक शुरू किया। धीरे धीरे प्रयास बढ़ता गया। जो लोग कभी इस फूड बैंक से मदद पाते थे, बड़े होकर खुद दूसरों की मदद करने लगे। एक शिक्षक ने अपने स्कूल में बच्चों को ये कहानी सुनाई और बच्चों ने मिलकर अपनी कॉलोनी में एक साझा दान पेटी शुरू की, जिसमें हर घर से थोड़ा अनाज इकट्ठा होता। बरसों बाद रामलाल जब बूढ़ा हो चुका था, एक दिन वही मोहन जो अब खुद एक सफल व्यापारी बन चुका था, उसकी ठेली पर आया। उसने रामलाल को पहचान लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपको याद नहीं होगा पर आपकी उस एक शॉल ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। रामलाल हैरान रह गया। उसे तो वह शाम भी ठीक से याद नहीं थी। उसके लिए वह सब एक इंसान की मदद करने का साधारण सा पल था, लेकिन एक साधारण पल से जो लहर उठी थी वह अभी फैल रही थी। हर उस परिवार में जिसे कभी खाना मिला, हर उस बच्चे में जिसने दूसरे को देना सीखा, हर उस दिल में जिसने ये जाना कि दया कभी छोटी नहीं होती। कहते हैं एक दिया जलाने से अंधेरा उतना कम नहीं होता जितना वह हज़ार और दिए जलाने की ताकत रखता है। रामलाल ने बस एक दिया जलाया था, बाकी रोशनी समाज में खुद फैला दी और आज तक फैल रही है उन गलियों में भी जहां रामलाल कभी गया भी नहीं।
1: तो ये थी कहानी। शैलजा जी, आपको पसंद आई कि नहीं?
2: वाह, ये नहीं, आप तो बिल्कुल लेखक हो सकते हैं। इस कहानी से अब आप आगे बढ़िए और आप किताबें लिखिए।
1: कोशिश जारी है। कोशिश जारी है
2: ये, लेकिन आपका पहला अटेम्प्ट नहीं है, या पहले भी लिख चुके हैं कहानियां? लगता है
1: हाँ, थोड़ी थोड़ा बहुत मैं लिखता रहता हूँ अपने जीवन के बारे में और भी कुछ कुछ, तो आपको थोड़ा सा बाद में बताया जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि अभी ये लीला तिवारी जी ने ये बहुत प्रेरक कार्यक्रम के लिए दर्पण रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राजीव गुप्ता जी लिखते हैं, इम्प्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, फादर कैन प्रोवाइड सम सपोर्ट टू आवर चिल्ड्रन बट लाइक अम्ब्रेला इन अ स्टॉर्म, समटाइम्स ही फाइंड्स हिमसेल्फ हेल्पलेस बट ही कीप्स गोइंग। निराली दास्ता है ये, दिए और अंधेरे की छाते और बरसात की, पिता और बच्चों की मुश्किल में सहारा देने खुद ही फना हो जाते हैं। अलका गिरधर जी लिखती हैं, प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अच्छा था और यदि इतनी सारी जानकारी से ओतप्रोत हो तब तो बाद में एक बार फिर से सुनना पड़ ही जाता है। सुनील श्रीवास्तव जी कहते हैं ग्रेट रेडियो प्रोग्राम इंक्लूडिंग सोशल वर्क्स अचीवमेंट्स बाय सुब्बा राव जी। सुब्बा राव जी आपकी
2: सुब्बा राव की जय जयकार हो रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। और सुब्बा राव जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसी तरह से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अपने जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलिए कि अगर वो किसी तरह की कम्युनिकेशन की डिग्री कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम में आकर यहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
2: इन्हीं प्रदीप जी की कुर्सी में बैठ सकते हैं,
1: बिल्कुल बैठ सकते हैं
4: पोटेंशियल।
1: और फिर ये है कि किसी और को तो बैठना ही है इस कुर्सी पर इवेंचुअली, लेकिन ये है कि बच्चे लोग अगर आकर रेडियो में इंटरेस्टेड हैं, उनमें टैलेंट है, तो ये है कि दे आर मोस्ट वेलकम। हम तो ढूंढते रहते हैं कि यंग लोग, लेकिन भाग जल्दी जाते हैं
2: ये तो उनके जो रचनात्मक क्वालिटीज हैं उनको डेवलप करने के लिए अगर वो कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, कहानी, कविता, जो कुछ भी, क्योंकि यही होता है कि जो आगे चल के बड़े बड़े राइटर्स होते हैं उनको बचपन में कहीं से इंस्पिरेशन मिलता है। एंड आई थिंक इफ यू कैन टेल देम दैट दिस इज अनदर एवेन्यू वेयर दे कैन ट्राई देयर क्रिएटिविटी, बिकॉज आपको शब्दों में तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि आपने जो पूरा कंट्रोल किया है यहाँ का, कि हम लोगों को लीडरशिप चाहिए किसी भी कम्युनिटी के लिए, अगर लीडरशिप हमारी अच्छी है तो वी फील कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिहाइंड यू कि आप हमको रास्ता दिखाएंगे। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है, साधुवाद है कि आप इसी तरह से आपको चुनौतियों से आपको प्रेरणा मिलती रहे और आप अच्छा खाना खाते रहे
1: और न्यूट्रिशन पूरा रखें
2: और सूर्य जी आपकी सपोर्ट बनी रहे, इनके अपने पैरों पर खड़े हो रहे।
4: धन्यवाद जी हमें मौका देने के लिए, समाज से बात करने के लिए मौका देने के लिए, आप सबको धन्यवाद। एंड देखते हैं आगे जाते जाते और भी
1: हमसे जुड़े रहिए, हमसे जुड़े। आपको नमस्कार।
4: नमस्ते।
1: इसी के साथ साथ हम आपको एक और गीत अच्छा सा सुनाने जा रहे हैं।

0: दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है। आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके रिएक्शन भी बहुत अच्छे लगते हैं, हमें इस तरह से प्रोत्साहित करते रहिए। और अगले सप्ताह के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी अगली टीम आपसे मिलेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा।
1: आपकी फीडबैक से तो यही लगता है, लेकिन अगली बार बहुत दिनों बाद हम लोग बुलाएंगे सुबह जी को। अगले हफ्ते तो नहीं बुलाएंगे, उसके बाद में बुलाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।